ये खबरें एनएच के वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। बैन अल्क़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह ने मुतहदा अरब अमारात में एक हालिया ड्रोन हमले के बाद इस बात का इयादा किया है कि जौहरी पावर प्लांट्स पर हमले नाकाबले कबूल हैं। मुतहदा अरब अमारात के दारुलहुकूमत अबूधाबी में हुक्काम ने इतवार को ऐलान किया कि ड्रोन हमले से मुल्क के मगरबी हिस्से में बरका जौहरी बिजली घर के एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में आग भड़क उठी। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफायल मारियानो ग्रोसी ने मंगल को अक्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में सूरत हाल की वजाहत की। उन्होंने प्लांट में तापकारी की सतह को नॉर्मल करार दिया और कहा कि किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि चूंकि बिजली घर फाल हालत में है, बरह रास्त हमला माहौल में तापकारी के बहुत ज्यादा इखराज का सबब बन सकता है। ग्रोसी ने यूक्रेन और ईरान में जौहरी तंजीबात का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि जौहरी बिजली घरों को बैन अल्क़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों के दो रोजा मुज़ाकरात पेरिस में इख्तिताम पजीर हो गए हैं। उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जिसमें ईरान जंग से पैदा होने वाले इक्तसादी खतरात और मस्नूई जहानत या AI के नए मॉडल्स से लाहक होने वाले खतरात से निमटने के लिए तावुन पर जोर दिया गया है। बयान में ये बात जोर देकर कही गई है कि ईरान से मुतलिका सूरत हाल के सबब इक्तसादी तरक्की और इफरात जर के हवाले से खतरात बढ़ गए हैं। बयान में क्लॉड मेथोस जैसे आला कारकर्दगी के हामिल नए AI मॉडल्स और उनसे मालियाती निजामों को लाहक होने वाले खतरात का जिक्र भी किया गया है। G7 ने कहा है कि मालूमात के तबादलों में इजाफा करने और बेहतरीन अमली तरीकों की निशानदेही करने के लिए काम किया जाएगा। G7 ने बज़ाहर चीन का हवाला देते हुए कलीदी मादनियात पर बिला जवाज जकतरफा बरामदी पाबंदियों के बारे में भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इनसे आलमी सप्लाई चेन में खलल पड़ता है। ममालिक का यह ग्रुप G7 के अराकीन और हम ख्याल शराकत दारों के दरमियान सप्लाई चेन को मतनव्वे बनाने के लिए तावुन को गहरा करने और वसत देने का इरादा रखता है। निजी शोभों को भी मंसूबे में शामिल किया गया है।

0: यूनिफिकेशन चर्च के नाम से मारूफ मजहबी ग्रुप के लिक्विडेटर यानी तस्फिया कार ने जापान में इस ग्रुप के मुतासरीन से जर तलाफी की दरखास्तें कबूल करना शुरू कर दी हैं। मार्च में टोक्यो हाई कोर्ट के फैसले में मुल्क के इस ग्रुप की मजहबी कारपोरेशन की हैसियत कलदम हो गई थी। अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा लिक्विडेटर अब अगला कदम उठा रहा है। लिक्विडेटर बुध के रोज से अगले एक साल तक जर तलाफी की दरखास्तें कबूल करेगा। तस्फिया कारों की टीम का कहना है कि उसने ग्रुप के असासों में से कम अज कम 40 बिलियन येन या तकरीबन 250 मिलियन डॉलर जब्त कर लिए हैं। टीम के मुताबिक ये रकम तंजीम के मालिक खातों से मुतल्लिक लेन देन को मुअत्तल करके हासिल की गई है। तवक्को है कि जर तलाफी के लिए दरखास्तें देने वालों में वो लोग शामिल होंगे जिन्हें ग्रुप के रूहानी कारोबार से नुकसान पहुंचा था और वो अफराद भी जिन्होंने बड़े बड़े अतियात दिए थे। लिक्विडेटिंग टीम का कहना है कि वो मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए मजीद रकम हासिल करेगी और ये फंड्स ग्रुप की मलकियती ऐसी जायदादों की फरोख्त से हासिल किए जाएंगे जो फिलहाल जेर इस्तेमाल नहीं हैं। टीम ने कहा है कि एक साल की मुकर्रा मुद्दत के बाद जर तलाफी के दावे कबूल नहीं किए जाएंगे। मुबसरीन का ख्याल है कि ये मुतासरीन के लिए मुआवजा वसूल करने का आखिरी मुमकिन मौका होगा।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान की वज़ीर आज़म ताकायची सनाए और जनूबी कोरिया के सदर ई जे म्यून ने जनूबी कोरिया में मुलाकात की है। रहनुमाओं ने खित्ते में तवानाई की फराहमी को मज़ीद पायदार बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। इसमें पूरे हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए ज़खीरे को बढ़ाना शामिल है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के इम्कान का इरादा करते हुए इंदिया दिया है कि वो आने वाले दिनों में मुज़ाकरात में ईरान के रद्दअमल पर नज़र रखने का इरादा रखते हैं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों, तबसरों और तज़ियों के लिए आप जब चाहें विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट NHK.JP/Urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान सरकार पश्चिम एशिया के हालातों के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए $3 अरब से अधिक खर्च करने पर विचार कर रही है। सरकार और सत्ताधारी गठबंधन पार्टियां गैस और बिजली के बिलों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम रखना चाहती हैं। सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई और सितंबर में प्रति किलोवाट घंटा 2 येन और अगस्त में 2.4 येन की बिजली सब्सिडी प्रदान की थी। सरकार इस वर्ष गर्मियों में उससे 1 या 2 येन अधिक सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इन उपायों के लिए लगभग 500 अरब येन यानी $3 अरब से अधिक की राशि आवंटित करने की योजना पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ये धनराशि इस वित्त वर्ष के बजट में शामिल आरक्षित निधि से ली जाएगी। योजना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इस वर्ष का पूरक बजट तैयार करने की संभावना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जापान में अप्रैल में पश्चिम एशिया से कच्चे तेल के आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2/3 लुढ़की। ऐसा होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के कारण हुआ। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे तेल का आयात 67.2% गिरकर लगभग 38 लाख किलोलीटर रहा। नेफ्था सहित अन्य उत्पादों वाली तेल श्रेणी के आयात में 79.4% की भारी गिरावट देखी गई, जबकि तरलीकृत प्राकृतिक गैस में 76.1% की कमी आई। इसकी भरपाई के लिए जापान ने अन्य देशों व क्षेत्रों से तेल उत्पादों की खरीद का प्रयास किया। अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 38.8% और नेफ्था का आयात तेजी से कई गुना बढ़ा। अप्रैल में जापान के व्यापार संतुलन के बारे में मंत्रालय की रिपोर्ट में तेल आयात के आंकड़ों को शामिल किया गया। जापान ने अप्रैल में कुल मिलाकर लगभग 302 अरब येन यानी लगभग 1.9 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज किया। सेमीकंडक्टर संबंधी उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण निर्यात मूल्य 14.8% बढ़ा, जबकि आयात में 9.7% की वृद्धि हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अमेरिकी हथियारों की संभावित बिक्री के बारे में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी के निकट जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि हथियारों की बिक्री के बारे में फैसला लेने से पहले क्या वे लाई से बात करेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करता हूं। इस मामले से निपटने के बारे में ट्रंप ने कहा, हमने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ट्रंप ने इसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पिछले सप्ताह हुई शिखर बैठक को एक शानदार बैठक बताया। ट्रंप ने कहा, हम ताइवान समस्या पर काम करेंगे। पिछले सप्ताह शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की संभावित बिक्री के बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें ताइवान की बागडोर संभाल रहे व्यक्ति से बात करनी होगी। इसके जवाब में लाई ने भी बुधवार को बातचीत की तत्परता व्यक्त की। इससे पहले ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की संभावित बिक्री को तुरुप का पत्ता बताया था।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय सामरिक मेलजोल बढ़ाने का संकल्प लेते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने ईरान पर अमरीकी इजरायली सैन्य हमलों की आलोचना की और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देते हुए अपनी एकजुटता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने बुधवार को पेचिंग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में बातचीत कर संयुक्त वक्तव्य जारी किया। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसमें विवादित पक्षों के बीच संवाद और बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वक्तव्य में कहा गया है कि जापान अपने पुनर्सैन्यकरण में तेजी लाते हुए क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इसमें चीन और रूस ने मांग की है कि जापान अपने नए सैन्यवाद और पुनर्सैन्यकरण को रोके। इसमें दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने का संकल्प भी लिया है। चीन सरकार का कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच जारी शुल्क कटौती वार्ता के दायरे में दोनों पक्षों के 30 अरब डॉलर मूल्य के सामान आ सकते हैं। चीन ने दोनों देशों द्वारा लागू किए गए निर्यात नियंत्रणों पर विराम लगाने की नवंबर की समय सीमा को बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने की तत्परता भी व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने पिछले सप्ताह शुल्क कम करने पर चर्चा करने के लिए एक व्यापार परिषद के गठन पर सहमति व्यक्त की थी। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि शुल्कों में कटौती हेतु एक रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों का कम से कम 30 अरब डॉलर का सामान आएगा। मंत्रालय ने चीन और अमेरिका द्वारा लगाए गए निर्यात नियंत्रणों पर रोक को आगे बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। उसने कहा कि ऐसा करने से दोनों देशों के हितों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं की पूर्ति होगी, लेकिन मंत्रालय ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ वाजिब चिंताओं पर चर्चा जारी रखते हुए कानून और नियमों के अनुसार

0: दुर्लभ धातुओं पर निर्यात नियंत्रण जारी रखेगा। इससे संकेत मिलता है कि चीन इन प्रतिबंधों को बनाए रख सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदेगा। यह खुलासा शिखर बैठक में हुए समझौतों के बारे में व्हाइट हाउस द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान सरकार पश्चिम एशिया के हालातों के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए $3 अरब से अधिक खर्च करने पर विचार कर रही है। सरकार और सत्ताधारी गठबंधन पार्टियां गैस और बिजली के बिलों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम रखना चाहती हैं। सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई और सितंबर में प्रति किलोवाट घंटा 2 येन और अगस्त में 2.4 येन की बिजली सब्सिडी प्रदान की थी। सरकार इस वर्ष गर्मियों में उससे 1 या 2 येन अधिक सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इन उपायों के लिए लगभग 500 अरब येन यानी $3 अरब से अधिक की राशि आवंटित करने की योजना पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ये धनराशि इस वित्त वर्ष के बजट में शामिल आरक्षित निधि से ली जाएगी। योजना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इस वर्ष का पूरक बजट तैयार करने की संभावना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमामोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओ मामोरी देसु ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देसु ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एनमुसुबी नो मामोरी देसु।
1: वो एनमुसुबी का तावीज है। 800 yen का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एनमुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एनमुसुबी कोइबितो गा देकिरु ओमामोरी।
1: एनमुसुबी, प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।

0: आज का मुख्य वाक्य है
1: कवाई ओ मामोरी देसु ने,
0: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
2: इस वाक्य में
3: कवाई
2: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
3: ओमामोरी
2: का मतलब है तावीज,
3: देस
2: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है, और उसके बाद
3: ने
2: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
3: कवाई
0: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
3: कवाई ओ मेमोरी,
0: यानी प्यारा तावीज।
2: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होन तो कवाई, यानी सचमुच प्यारा है।
0: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
3: कवाई
0: यानी प्यारा है। अंत में
3: देसु ने
0: जोड़ने से बनता है
3: कवाई देसु ने।
0: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
2: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
3: कोरे मो ई देसु ने,
2: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
0: तो सुनिए और दोहराइए
3: कवाई कवाई देसु ने कवाई ओ मामोरी देसु ने।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
4: मीते कोनो टी शर्ट
5: ओमोशिरोई देसु ने।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
4: मीते कोनो टी शर्ट,
0: देखो ये टी शर्ट।
2: यहाँ
3: मीते
2: क्रिया
3: मीरु
2: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
3: कोनो
2: का अर्थ है ये और
3: टी शर्ट
2: का मतलब है टी शर्ट।
0: उसके बाद आदमी ने कहा
5: ओमोशिरोई देसु ने,
2: दिलचस्प है ना।
0: इस वाक्य में ई विशेषण
3: ओमोशिरोई
0: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
2: तो आप भी सुनिए और दोहराइए
3: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसु ने।
0: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
3: ओकी ओकी।
0: तो कोशिश कीजिए
4: ओकी देसु ने।
2: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना। महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
3: थकाई थकाई।
2: तो कोशिश कीजिए
4: थकाई देसु ने।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए
1: कोरे ओ कुदासाई।
3: कोरे ओ कुदासाई
2: का अर्थ है ये दे दीजिए।
3: कुदासाई
2: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
0: या रेस्तरां में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
3: कोरे ओ कुदासाई।
0: रेस्तरां के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
2: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
3: कोरे ओ कुदासाई।
0: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।

0: これ、かわいいお守りですね。
1: ほんと、かわいい。
0: これもいいですね。
2: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び、
1: 恋人ができるお守り。
0: じゃあ、これをください。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
5: और अब बारी है अंश घूमे मियां के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
6: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
5: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
6: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहाँ का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
5: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इज़ुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
6: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
5: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारुजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
6: सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान सरकार पश्चिम एशिया के हालातों के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए $3 अरब से अधिक खर्च करने पर विचार कर रही है। सरकार और सत्ताधारी गठबंधन पार्टियां गैस और बिजली के बिलों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम रखना चाहती हैं। सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई और सितंबर में प्रति किलोवाट घंटा 2 येन और अगस्त में 2.4 येन की बिजली सब्सिडी प्रदान की थी। सरकार इस वर्ष गर्मियों में उससे 1 या 2 येन अधिक सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इन उपायों के लिए लगभग 500 अरब येन यानी $3 अरब से अधिक की राशि आवंटित करने की योजना पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ये धनराशि इस वित्त वर्ष के बजट में शामिल आरक्षित निधि से ली जाएगी। योजना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इस वर्ष का पूरक बजट तैयार करने की संभावना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जापान में अप्रैल में पश्चिम एशिया से कच्चे तेल के आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2/3 लुढ़की। ऐसा होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के कारण हुआ। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे तेल का आयात 67.2% गिरकर लगभग 38 लाख किलोलीटर रहा। नेफ्था सहित अन्य उत्पादों वाली तेल श्रेणी के आयात में 79.4% की भारी गिरावट देखी गई, जबकि तरलीकृत प्राकृतिक गैस में 76.1% की कमी आई। इसकी भरपाई के लिए जापान ने अन्य देशों व क्षेत्रों से तेल उत्पादों की खरीद का प्रयास किया। अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 38.8% और नेफ्था का आयात तेजी से कई गुना बढ़ा। अप्रैल में जापान के व्यापार संतुलन के बारे में मंत्रालय की रिपोर्ट में तेल आयात के आंकड़ों को शामिल किया गया। जापान ने अप्रैल में कुल मिलाकर लगभग 302 अरब येन यानी लगभग 1.9 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज किया। सेमीकंडक्टर संबंधी उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण निर्यात मूल्य 14.8% बढ़ा, जबकि आयात में 9.7% की वृद्धि हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अमेरिकी हथियारों की संभावित बिक्री के बारे में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी के निकट जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि हथियारों की बिक्री के बारे में फैसला लेने से पहले क्या वे लाई से बात करेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करता हूं। इस मामले से निपटने के बारे में ट्रंप ने कहा, हमने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ट्रंप ने इसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पिछले सप्ताह हुई शिखर बैठक को एक शानदार बैठक बताया। ट्रंप ने कहा, हम ताइवान समस्या पर काम करेंगे। पिछले सप्ताह शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की संभावित बिक्री के बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें ताइवान की बागडोर संभाल रहे व्यक्ति से बात करनी होगी। इसके जवाब में लाई ने भी बुधवार को बातचीत की तत्परता व्यक्त की। इससे पहले ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की संभावित बिक्री को तुरुप का पत्ता बताया था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय सामरिक मेलजोल बढ़ाने का संकल्प लेते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने ईरान पर अमरीकी इजरायली सैन्य हमलों की आलोचना की और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देते हुए अपनी एकजुटता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने बुधवार को पेचिंग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में बातचीत कर संयुक्त वक्तव्य जारी किया। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसमें विवादित पक्षों के बीच संवाद और बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वक्तव्य में कहा गया है कि जापान अपने पुनर्सैन्यकरण में तेजी लाते हुए क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इसमें चीन और रूस ने मांग की है कि जापान अपने नए सैन्यवाद और पुनर्सैन्यकरण को रोके। इसमें दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने का संकल्प भी लिया है। चीन सरकार का कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच जारी शुल्क कटौती वार्ता के दायरे में दोनों पक्षों के 30 अरब डॉलर मूल्य के सामान आ सकते हैं। चीन ने दोनों देशों द्वारा लागू किए गए निर्यात नियंत्रणों पर विराम लगाने की नवंबर की समय सीमा को बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने की तत्परता भी व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने पिछले सप्ताह शुल्क कम करने पर चर्चा करने के लिए एक व्यापार परिषद के गठन पर सहमति व्यक्त की थी। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि शुल्कों में कटौती हेतु एक रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों का कम से कम 30 अरब डॉलर का सामान आएगा। मंत्रालय ने चीन और अमेरिका द्वारा लगाए गए निर्यात नियंत्रणों पर रोक को आगे बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। उसने कहा कि ऐसा करने से दोनों देशों के हितों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। लेकिन मंत्रालय ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ वाजिब चिंताओं पर चर्चा जारी रखते हुए कानून और नियमों के अनुसार दुर्लभ धातुओं पर निर्यात नियंत्रण जारी रखेगा। इससे संकेत मिलता है कि चीन इन प्रतिबंधों को बनाए रख सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदेगा। यह खुलासा शिखर बैठक में हुए समझौतों के बारे में व्हाइट हाउस द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान सरकार पश्चिम एशिया के हालातों के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 3 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने पर विचार कर रही है। सरकार और सत्ताधारी गठबंधन पार्टियां गैस और बिजली के बिलों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम रखना चाहती हैं। सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई और सितंबर में प्रति किलोवाट घंटा 2 येन और अगस्त में 2.4 येन की बिजली सब्सिडी प्रदान की थी। सरकार इस वर्ष गर्मियों में उससे 1 या 2 येन अधिक सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इन उपायों के लिए लगभग 500 अरब येन यानी 3 अरब डॉलर से अधिक की राशि आवंटित करने की योजना पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ये धनराशि इस वित्त वर्ष के बजट में शामिल आरक्षित निधि से ली जाएगी। योजना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इस वर्ष का पूरक बजट तैयार करने की संभावना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमा मोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओ मामोरी देस ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देस ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एन मुसुबी नो मामोरी देस।
1: वो एन मुसुबी का तावीज है। 800 येन का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एन मुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एन मुसुबी
1: प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा, कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: कावाई ओमामोरी देस ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
6: कवाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
6: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज।
6: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है और उसके बाद
6: ने
0: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
6: कवाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
6: कवाई ओ मेमोरी,
1: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होन तो कवाई, यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
6: कवाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
6: देसने
1: जोड़ने से बनता है
6: कवाई देसने।
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
6: कोरे मो ई देसने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: कवाई कवाई देसु ने, कवाई ओ मामोरी देसु ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
7: この T シャツ
8: 面白いですね。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
5: मीते कोनो टीशर्ट्स,
1: देखो ये टी शर्ट।
0: यहाँ
6: मीते
0: क्रिया
6: मीरु
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
6: कोनो
0: का अर्थ है ये और
6: टी शर्ट्स
0: का मतलब है टी शर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा,
7: ओमोशिरोई देसु ने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
6: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए,
6: ओमोशिरोई, ओमोशिरोई देसु ने।
1: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है, बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
6: ओकी, ओकी।
1: तो कोशिश कीजिए,
5: ओकी देसु ने।
0: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना। महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
6: थकाई, थकाई।
0: तो कोशिश कीजिए,
5: थकाई देसु ने।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए,
2: कोरे ओ कुदासाई,
6: कोरे ओ कुदासाई
0: का अर्थ है ये दे दीजिए।
6: कुदासाई
0: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
1: या रेस्तरां में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
6: कोरे ओ कुदासाई।
1: रेस्तरां के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए,
6: कोरे ओ कुदासाई।
1: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: कोरे कावाई ओ मामोरी देसु ने।
3: होंतो कावाई।
2: कोरे मो ई देसु ने।
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
0: और अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
1: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
0: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
1: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
0: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इज़ुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारूजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 21 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान सरकार पश्चिम एशिया के हालातों के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए $3 अरब से अधिक खर्च करने पर विचार कर रही है। सरकार और सत्ताधारी गठबंधन पार्टियां गैस और बिजली के बिलों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम रखना चाहती हैं। सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई और सितंबर में प्रति किलोवाट घंटा 2 येन और अगस्त में 2.4 येन की बिजली सब्सिडी प्रदान की थी। सरकार इस वर्ष गर्मियों में उससे 1 या 2 येन अधिक सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इन उपायों के लिए लगभग 500 अरब येन यानी $3 अरब से अधिक की राशि आवंटित करने की योजना पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ये धनराशि इस वित्त वर्ष के बजट में शामिल आरक्षित निधि से ली जाएगी। योजना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इस वर्ष का पूरक बजट तैयार करने की संभावना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जापान में अप्रैल में पश्चिम एशिया से कच्चे तेल के आयात की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2/3 लुढ़की। ऐसा होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रभावी रूप से बंद होने के कारण हुआ। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे तेल का आयात 67.2% गिरकर लगभग 38 लाख किलोलीटर रहा। नेफ्था सहित अन्य उत्पादों वाली तेल श्रेणी के आयात में 79.4% की भारी गिरावट देखी गई, जबकि तरलीकृत प्राकृतिक गैस में 76.1% की कमी आई। इसकी भरपाई के लिए जापान ने अन्य देशों व क्षेत्रों से तेल उत्पादों की खरीद का प्रयास किया। अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 38.8% और नेफ्था का आयात तेजी से कई गुना बढ़ा। अप्रैल में जापान के व्यापार संतुलन के बारे में मंत्रालय की रिपोर्ट में तेल आयात के आंकड़ों को शामिल किया गया। जापान ने अप्रैल में कुल मिलाकर लगभग 302 अरब येन यानी लगभग 1.9 अरब डॉलर का अधिशेष दर्ज किया। सेमीकंडक्टर संबंधी उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण निर्यात मूल्य 14.8% बढ़ा, जबकि आयात में 9.7% की वृद्धि हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे अमेरिकी हथियारों की संभावित बिक्री के बारे में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के साथ बातचीत करने के इच्छुक हैं। ट्रंप ने बुधवार को वॉशिंगटन डीसी के निकट जॉइंट बेस एंड्रयूज में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि हथियारों की बिक्री के बारे में फैसला लेने से पहले क्या वे लाई से बात करेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं सबसे बात करता हूं। इस मामले से निपटने के बारे में ट्रंप ने कहा, हमने स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ट्रंप ने इसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पिछले सप्ताह हुई शिखर बैठक को एक शानदार बैठक बताया। ट्रंप ने कहा, हम ताइवान समस्या पर काम करेंगे। पिछले सप्ताह शी जिनपिंग के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की संभावित बिक्री के बारे में टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें ताइवान की बागडोर संभाल रहे व्यक्ति से बात करनी होगी। इसके जवाब में लाई ने भी बुधवार को बातचीत की तत्परता व्यक्त की। इससे पहले ट्रंप ने ताइवान को हथियारों की संभावित बिक्री को तुरुप का पत्ता बताया था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय सामरिक मेलजोल बढ़ाने का संकल्प लेते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने ईरान पर अमरीकी इजरायली सैन्य हमलों की आलोचना की और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देते हुए अपनी एकजुटता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने बुधवार को पेचिंग स्थित ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में बातचीत कर संयुक्त वक्तव्य जारी किया। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ईरान पर अमरीका और इसराइल के सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसमें विवादित पक्षों के बीच संवाद और बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वक्तव्य में कहा गया है कि जापान अपने पुनर्सैन्यकरण में तेजी लाते हुए क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इसमें चीन और रूस ने मांग की है कि जापान अपने नए सैन्यवाद और पुनर्सैन्यकरण को रोके। इसमें दोनों पक्षों ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने का संकल्प भी लिया है। चीन सरकार का कहना है कि चीन और अमेरिका के बीच जारी शुल्क कटौती वार्ता के दायरे में दोनों पक्षों के 30 अरब डॉलर मूल्य के सामान आ सकते हैं। चीन ने दोनों देशों द्वारा लागू किए गए निर्यात नियंत्रणों पर विराम लगाने की नवंबर की समय सीमा को बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने की तत्परता भी व्यक्त की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने पिछले सप्ताह शुल्क कम करने पर चर्चा करने के लिए एक व्यापार परिषद के गठन पर सहमति व्यक्त की थी। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि शुल्कों में कटौती हेतु एक रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, जिसके अंतर्गत दोनों पक्षों का कम से कम 30 अरब डॉलर का सामान आएगा। मंत्रालय ने चीन और अमेरिका द्वारा लगाए गए निर्यात नियंत्रणों पर रोक को आगे बढ़ाने की इच्छा भी व्यक्त की। उसने कहा कि ऐसा करने से दोनों देशों के हितों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं की पूर्ति होगी, लेकिन मंत्रालय ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ वाजिब चिंताओं पर चर्चा जारी रखते हुए कानून और नियमों के अनुसार दुर्लभ धातुओं पर निर्यात नियंत्रण जारी रखेगा। इससे संकेत मिलता है कि चीन इन प्रतिबंधों को बनाए रख सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदेगा। यह खुलासा शिखर बैठक में हुए समझौतों के बारे में व्हाइट हाउस द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है।
1: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान सरकार पश्चिम एशिया के हालातों के कारण ऊर्जा की बढ़ती लागत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 3 अरब डॉलर से अधिक खर्च करने पर विचार कर रही है। सरकार और सत्ताधारी गठबंधन पार्टियां गैस और बिजली के बिलों को पिछली गर्मियों की तुलना में कम रखना चाहती हैं। सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई और सितंबर में प्रति किलोवाट घंटा 2 येन और अगस्त में 2.4 येन की बिजली सब्सिडी प्रदान की थी। सरकार इस वर्ष गर्मियों में उससे 1 या 2 येन अधिक सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इन उपायों के लिए लगभग 500 अरब येन यानी 3 अरब डॉलर से अधिक की राशि आवंटित करने की योजना पर जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। ये धनराशि इस वित्त वर्ष के बजट में शामिल आरक्षित निधि से ली जाएगी। योजना के व्यापक स्वरूप को देखते हुए इस वर्ष का पूरक बजट तैयार करने की संभावना पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमामोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओ मामोरी देसु ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देसु ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एनमुसुबी नो मामोरी देसु।
1: वो एनमुसुबी का तावीज है। 800 yen का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एनमुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एनमुसुबी, कोइबितो गा देकिरु ओमामोरी।
1: एनमुसुबी, प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा, कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: कावाई ओमामोरी देसु ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
6: कावाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
6: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज।
6: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है और उसके बाद
6: ने
0: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
6: कावाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
6: कावाई ओ मेमोरी,
1: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होंतो कावाई, यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
6: कावाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
6: देसु ने
1: जोड़ने से बनता है
6: कावाई देसु ने।
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
6: कोरे मो ई देसु ने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: कावाई, कावाई देसु ने, कावाई ओमामोरी देसु ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
7: このTシャツ。
8: 面白いですね。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
7: मीते कोनो टी-शर्ट्स,
1: देखो ये टी-शर्ट।
0: यहाँ
6: मीते
0: क्रिया
6: मीरु
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
6: कोनो
0: का अर्थ है ये और
6: टी-शर्ट्स
0: का मतलब है टी-शर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा,
8: ओमोशिरोई देसुने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
6: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए,
6: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसुने।
1: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है, बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
6: ओकी ओकी।
1: तो कोशिश कीजिए,
7: ओकी देसु ने।
0: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना। महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
6: थकाई थकाई।
0: तो कोशिश कीजिए,
7: थकाई देसु ने।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए,
2: कोरे ओ कुदासाई।
6: कोरे ओ कुदासाई
0: का अर्थ है ये दे दीजिए।
6: कुदासाई
0: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
1: या रेस्तरां में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
6: कोरे ओ कुदासाई।
1: रेस्तरां के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए,
6: कोरे ओ कुदासाई।
1: तो दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: कोरे कावाई ओ मामोरी देसु ने।
3: होंतो कावाई।
2: कोरे मो ई देसु ने।
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
0: और अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
1: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
0: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
1: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
0: इसके अलावा शिमाने प्रिफेक्चर की इज़ुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारूजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
1: सायोनारा।